सामने क्राम लंबे जूते के फीते खोलने में काफी दिक्कत आती है और वक्त भी लगता है। ये बहुत परेशान कुन भी हो सकता है क्योंकि इनमें अक्सर गिरह लग जाती है। जूते के साथ बेमाना जिद्दोजहद का नतीजा ये निकल सकता है कि फीते को खोले बगैर ही जूते को जबरदस्ती पाँव से निकाल बाहर किया जाए और शायद एक तरफ फेंक दिया जाए। लेकिन हकीकत यह है कि अपने जूते दोबारा पहनते वक्त आपको इन गिरों को एक एक करके खोलना ही पड़ता है। अच्छा, तो इसका क्या हल है? इस सवाल का जवाब एक सादा तरीकाकार है जिसे इंसान ईजाद होने के दिन से अरबों बार इस्तेमाल कर चुके हैं। इसका नाम जिप है। इस सादा सी इजाद को हल्का मत ले। अमरीकी यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड के मोरख रॉबर्ट फेडरल के मुताबिक जिप की तैयारी में कंप्यूटर हवाई जहाज की इजाद से भी ज्यादा वक्त लगा, जो कि फौरी जरूरत

0: का एक इत्तफाकी नतीजा था। आजकल हमारे कपड़ों को ठीक तरह से फिट करने के लिए इस्तेमाल करता बैग या सूट केस में हमारे एशिया को महफूज करने के लिए प्रयोग कर लाई जाने वाली पहली जिप की इजाद 1851 से ताल्लुक रखती है। जिप की तरफ पहला कदम उठाने वाले शख्स का नाम एलियस होवो था, जिसने जदीद सिलाई मशीन भी ईजाद की थी, लेकिन पेटेंट के हकूक मैकेनिकल इंजीनियर मोजत विटकॉम जॉर्जसन ने हासिल किए थे। दरअसल जिप की बनावट से कोई ताल्लुक न होने वाले जॉर्जसन का एक दोस्त अपने जूते के लिए लंबे फीते को खोलने में दिक्कत पेश आने की अक्सर व बेशतर शिकायत करता रहता था। अपने दोस्त की मदद के ख्वाहान जॉर्जसन ने कुछ देर तक की सोचो विचार के बाद इस मसले का एक इतफाकी हल घर आने जाने के लिए ट्रेन के सफर के दौरान ढूंढ निकाला। रेलवे लाइन्स पर ट्रेनों के आगे बढ़ सकने में मामिल होने वाले रेल निज़ाम को दो अलग अलग हिस्सों को यकजा करके एक मैकेनिज्म में तब्दील कर सकने का अंदाजा करने वाले जॉर्जसन ने बकल हुक बनाकर जिप की ईजाद में अपना हिस्सा डाला और 1893 में इसका पेटेंट हासिल कर लिया। अमेरिकी मौजूद का डिजाइन खासतौर पर लॉन्ग शूज में इस्तेमाल के लिए दोनों जन्म हुक और रिंग जुड़े हुए स्लाइडर पर मुश्तमिल था। ताहम ने ईजाद मतलूबा तौर पर काम न कर सकी और ये अक्सर फंस जाती थी। जिप को मौजूदा शक्ल देने वाले स्वीडिश इंजीनियर गेदोन सैंडबैग ने अवलीन तौर पर हुक्स को खारिज किया और एक सख्त पट्टी पर दो दांती कतार पर मुश्तमिल वाई की शक्ल में एक स्लाइडर के साथ काम करने वाले एक नए मॉडल की तख्लीक की। इस तरह जिप की ईजाद का अमल तकमील को पहुंचा। ताहम हर नई ईजाद की तरह जिप ने जूते बैग कपड़े बनाने फैक्ट्रियों की ज्यादा तवज्जो हासिल न की। उन्होंने फित्ते के हामिल बूट बटनों वाली जैकेटें और पतलून तैयार करने के अमल को जारी रखा। जिन्होंने जिप को मकबूल बनाया वो अमरीकी फाइटर पायलट थे, जिन्होंने 1917 में पहली जंग अजीम में ओपन टॉप प्रोपेलर तैयारों के साथ हिस्सा लिया। पटनों के बरअक्स लंबी जिप पायलटों के मोटे फ्लाइट सूट के अगले हिस्से को विंड प्रूफ अंदाज में मकम्मल तौर पर बंद करने के लिए इस्तेमाल की गई। 1930 की दहाई में अब जिप एक फैशन आइकॉन बन चुका था। बूट पतलू ने चमड़े की जैकेटें हैंडबैग जो खवातीन के लिए नागजीर थे अब जिपों से खोले और बंद किए जाते थे। दूसरी जंग अजीम के बाद जिप वाली जीन्स चमड़े की जैकेटें हॉलीवुड फिल्मों के भी असर से रियासती निज़ाम के खिलाफ बगावत करने वाले बागी नौजवानों की अलामत बन गई। अगरचे तकरीबन 100 बरसों से इनके डिजाइन में कोई तब्दीली नहीं आई, ताहम असनहाजन में रंग बिरंगी जिपें अब भी हमारी जिंदगियों का नागजीर जुज्व हैं। मलबूसात बैग्स और जूतों के अलावा जिपें बहुत से खसूसी मलबूसात और आलात में इस्तेमाल की जाती हैं। मिसाल के तौर पर कोताखोरी यूनिफार्म में निकल और चांदी से बनी दबाव के खिलाफ मुजामत के हामिल जिपें इस्तेमाल की जाती हैं। खला की मंचमंद सर्दी से मुतासर होने से बचाव के लिए खला नवर्दों के खसूसी जंपर्स को भी जिपों की मदद से महफूज बनाया जाता है। मुश्किल से खुलने वाले लॉन्ग शूज के फीतों के हल के लिए ईजाद की गई बाजार की छोटी सी ईजाद अब दुनिया के गहरे तरीन समंदरों या खला में अपने वजूद को मनवा रही है। जिपें चाहे इतफाक ही क्यों ना हो, किसी ईजाद का तसव्वुर करते वक्त इसके लामुतनाहि फायदे के दरवाजे खोलने का वाज़ेह तौर पर मुजाहरा करती हैं। सामिन के साथ हमारा आज का सिलसिला प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर होता है। आइंदा हफ्ते दोबारा पेश खिदमत होंगे, तब तक के लिए अपने मेज़बान इमरान ओपर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
1: अहम इजादात।

0: मंगल को शाया करदा खबर में कहा अमरीका इसराइल ने ईरान के खिलाफ जंग शुरू करने और 28 फरवरी के इब्तदाई फजाई हमलों में उस वक्त के सुप्रीम लीडर अली हमनई को हलाक करने से चंद दिन बाद एक सबक ईरानी सदर को इकतदार में लाने का मनसूबा बनाया था। अमरीकी हुकाम ने टाइम्स को फराहम करदा मालूम में कहा यह जरूरतमंदाना मनसूबा इसराइल ने अमरीकी हुकूमत की मंजूरी से तैयार था और इसका मकसद तेहरान क़यादत को ईरान के अंदर से किसी शख्स के जरिए तब्दील करना था, जैसे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के इब्तदाई दिनों में तजवीज़ भी किया था। टाइम्स के मुताबिक उस शख्स अपनी सख्ती इसराइल मुखालफ अमरीका मुखालफ अरा की वजह से मशहूर साबिक ईरानी सदर महमूद अहमदनेजाद थे और हुकूमत की तब्दीली के मनसूबे पर उनसे मशावरत भी की गई थी। रिपोर्ट में क्या कहा है कि वाजह नहीं कि अहमदनेजाद को क्यों मुंतखब किया गया, क्योंकि चूंकि वो 2005 से 2013 तक अपने दौरे सदारत में इसराइल को नक्शे से मिटा देने के बयान के साथ पहचाने जाते थे, लिहाजा का गैर मामूली इंतखाब थे। अहमदीनेजाद ईरान के जौहरी प्रोग्राम के मजबूत हामी अमरीका के कड़े नाकद और अंदरूनी इख्तलाफात राय को सख्ती से दबाने की वजह से भी मशहूर थे। तहम हुकाम के मुताबिक ये इब्तदाई मनसूबा जल्द ही नाकाम हो गया क्योंकि अहमदनेजाद जंग के पहले दिन ही एक इसराइली हमले में जख्मी हो गए थे। यह हमला उन्हें तेहरान नज़रबंदी से आज़ाद कराने के ज़ेर मकसद उनके घर पर किया गया था। हुकाम ने मजीद कहा इस नाकाम फजे हमले के बाद अहमदनेजाद और अमरीकी हुकाम दोनों ही हुकूमत की तब्दीली के मनसूबे से दस्तबरदार हो गए थे।
1: इसराइली मीडिया ने लिखा है कि तल अबीब इंतजामिया गजा का मुहासरा तोड़ने का हदफ रखने वाले आलमी समूह फ्लोटीला से इस कदर खौफजदा क्यों हैं। अखबार हारेट्स में शाया होने वाले एक मजमून जिसका उनवान इसराइल गजा जाने वाली छोटी सिविलियन कश्तियों से इतना क्यों डरता है, इसमें 44 ममालिक के 428 सरगर्म कारकनों पर मुश्तमिल इस फ्लोटीला की वजह से तल अबीब में पैदा होने वाली तशवीश और उसकी वजूहत की तरफ तवज्जो मबजूल करवाई गई है। इस तजिये में इस बात पर जोर दिया गया है कि सिविलियन फ्लोटीला की असल ताकत गजा के इंसानी बहरान की तरफ दुनिया की तवज्जो दोबारा मबजूल कराने की सलाहियत है, जिसे आलमी एजेंडे से हटाने की कोशिश की जा रही है। मजमून में बताया गया है कि बैनुल अक्वामी पानियों में इसराइली फौज की गैर कानूनी मदाखलत किसी फौजी खतरे के खिलाफ नहीं थी, बल्कि यह उन कश्तियों से की जाने वाली बराह रास्त नशरियात और दुनिया भर में पहुंचने वाले कारकुनों के पैगाम के खौफ की वजह से की गई थी। वज़ीर आज़म नेतन्याहू समेत आला हुकाम की जानब से एक सिविलियन फ्लोटीला के खिलाफ दिखाई जाने वाली यह फौजी तैयारी तल अबीब की गहरी तशवीश और खौफ को वाज़ह तौर पर जाहिर करती है।
0: जनूबी कोरिया के सदर ली जे म्यूंग ने बुध को कहा सियोल को बैन अक्वामी फौजदारी अदालत के इसराइल वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर हमें भी गौर करना चाहिए। उन्होंने जनूबी कोरिया के कारकुनों के सवार होने वालों का ज़ैमदादी फ्लोटेला पर इसराइल फौज के कब्जे की शदीद मुज़म्मत भी की। काबीना इजलास के खिताब में ली ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला को रोकने की कुनियान कानूनी जवाज व बुनियाद पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या वो जहाज इसराइल बहरी हदूद में दाखिल हुआ था या किसी तस्लीम शुदा सरहद की खिलाफ वर्जी थी। उन्होंने कहा तकरीबन तमाम यूरोप मालिक ने नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए ऐलान किया कि अगर वो उनके इलाकों में दाखिल हुआ तो उसे गिरफ्तार करेंगे, हमें भी इस पर गौर करना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा इसराइल बैन अक्वामी इकदार के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, असूलों की पाबंदी करनी चाहिए, हमने इसे बड़े तवील अरसे तक बर्दाश्त किया है। ली का कहना था गजा के लिए रजाकारान तौर पर जाने वाले जहाज़ों हमारे शहरों के जहाज़ों को कब्जे में लेने या डुबोने की इसराइल के पास कौन सी कानूनी बुनियाद है, क्या गजा पर इसराइल का हमला और कब्जा बैन अक्वामी कानून के तहत गैर कानूनी नहीं। कौमी सलामती की मशीर दी सोंग लॉक ने इस सवाल पर कहा इस मामले की जांच जरूरी है। ली ने दरियाफ्त किया कि क्या गजा इसराइली इलाका है, जिसका जवाब देते हुए वी ने कहा नहीं इसराइली इलाका नहीं है।

0: ये खबरें सदाए तुर्किये की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: दमिश्क में वजारत दिफा की इमारत के करीब होने वाले बम धमाके में एक शामी फौजी हलाक और कई दीगर जख्मी हो गए। शामी खबर रसा एजेंसी साना के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज एक नस्ब शुदा बम को नाकारा बनाने की कोशिश कर रही थी कि उसी दौरान वहां एक कार बम धमाका हो गया। दमिश्क के महकमा सेहत के मुताबिक इस वाक़े में एक शख्स हलाक और 12 जख्मी हो गए हैं। यह हमला 2024 के आखिर में बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे और जनवरी 2025 में सदर अहमद अलशरा की क़्यादत में कायम होने वाली नई शामी इंतजामिया के दौर में अमन व अमान कायम करने की कोशिशों के दौरान पेश आया है। अब तक किसी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है।
0: अकवाम तक के जोरी निगरान इदारे के सरबरा ने खबरदार किया अमती दार अमारात में बुरा जोरी पॉइंट पर बरह रास्ता हमला संगीन ताप का नतज का बायस बन सकता।

0: सकता है। इस तंजीम को निशाना बनाने वाले हाली ड्रोहमने के बाद क्वांतक सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब करते हुए राफेल ग्रोसी ने कहा, सूरतेहाल इंतहाई तशवीशनाक है। ग्रोसी ने कहा, यह मशरक़ वस्ता में एक जोहरी मकाम है जहाँ किसी हमले के नतज इंतहाई संगीन हो सकते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया, बराक का प्लान चौदह हुकूमत से लगभग 300 किलोमीटर दूर है, एक फाल जौहरी तंजीम है जिसमें हजारों किलोग्राम जौहरी मवाद मौजूद है। उन्होंने कहा, बराक का न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की सूरत में कोई भी बरह रास्त निशाना माहौल में बहुत ज्यादा ताबकारी के अखराज का मूजब बन सकती है। रोशनी ने मजीद कहा, बैरूनी बिजली की फ्राहमी की लाइनों को पहुंचने का नुकसान भी संगीन खतरात का मूजब है। उन्होंने खबरदार किया, दोनों सूरतों में हंगामी हिफाजती इकदाम की जरूरत होगी जिसमें 2100 किलोमीटर तक फैले हुए फासलों के लिए लोगों का इनखला पनाहगाहें फ्राहम करना, मुस्तहकम आयोडीन का इस्तेमाल शामिल है। रोशनी ने ऐलान किया, जल्द ही माल को हंगामी तैयारी रद्दमल की शिकायतों का जायजा लेने के लिए खत्ते का दौरा करेंगे। इतवार के रोज़ मुतहदा अरब अमारात के हुकाम ने बताया था, ड्रोन हमले के बायस बराका पावर प्लांट का करीब आग भड़क उठी थी। मुतहदा अरब अमारात ने गुज़िश्ता रोज़ कहा, इतवार को बराका न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट का करीब ड्रोन हमला इराकी सरजमीन से किया गया था। वजारत दफा ने बताया कि उस दिन रोके गए 2 इजाफी ड्रोन भी इराक से ही दागे गए थे। मुतहदा अरब अमारात ने इस तस्दीक पर होने वाले हमले के माखज का पता चलाने के लिए तहकीकात शुरू कर दी है।
1: रूसी सदर व्लादिमिर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान बीजिंग में होने वाले मुज़ाकरात के बाद रूस और चीन ने मईशत, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और बैनुल अक़वामी तआवुन पर मबनी 20 दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए हैं। दोनों रहनुमाओं ने शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने और ताल्लुकात को गहरा करने के लिए एक मुश्तरका बयान जारी किया। मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर पुतिन ने बताया कि मास्को और बीजिंग ने बाहमी तजारत का एक ऐसा मुस्तहकम निज़ाम कायम कर लिया है जो बैरूनी दबाव और आलमी मंडियों के उतार चढ़ाव से महफूज है। पुतिन ने कहा कि रूस और चीन की तरफ से बाहमी अदायगियों को कौमी करेंसियों में मुंतकिल करने के मरबूत इकदाम इंतहाई अहमियत के हामिल रहे हैं। नतीजे के तौर पर अब रूस और चीन के दरमियान होने वाली तकरीबन तमाम तजारती कार्रवाइयाँ रूबल और युआन में की जा रही हैं। रूसी सदर ने यह भी कहा कि रूस चीन को तेल और गैस की बिला तातुल फराहमी जारी रखने के लिए तैयार है और रूसी न्यूक्लियर कॉरपोरेशन रूस आटोम वसी तर तवानाई तआवुन के हिस्से के तौर पर चीन में जौहरी पावर प्लांट्स के नए यूनिट्स की तामीर मुंतकिल कर रही है। उन्होंने रूस और चीन की शराकत दारी को बैनुल अक़वामी उमूर में इस्तेहकाम पैदा करने वाला एक अहम उनसर करार दिया। मजीद बरआ पुतिन ने दोनों ममालिक के दरमियान बिला वीज़ा निज़ाम के मुस्बत नतायज की तरफ इशारा किया जिससे सियाहत और अवामी राबतों को फ़रोग मिला है। उन्होंने बताया कि साल 2025 में 20 लाख से ज्यादा रूसी शहरी चीन आए जबकि 10 लाख से ज़्यादा चीनी शहरियों ने रूस की सैर की। इसके साथ ही सदाए तुर्की से उर्दू में खबर ख़त्म हुई।
0: तो आइए साहब यशार और सरदार और ताज की आवाज में दो नगमे सुनते हैं। पहले गाने के बोल हैं ख्योर आज और सहर साना।

उसे उसकी बीवी बेटी दामाद और बहन को कत्ल कर दिया। शहीद डॉक्टर की बेटी लुबना अल सुल्तान ने अखबारी नुमाइंदों के लिए बयान में कहा कि इसराइल ने सिर्फ उस कमरे को निशाना बनाया जहां मेरे वालिद मौजूद थे। उन्होंने बिल्कुल उसी जगह को और खुद उसे निशाना बनाकर मिसाइल फायर किया। असल में उस दिन सिर्फ एक डिग्री याफ्ता डॉक्टर को नहीं, तिब को शफकत के साथ मिलाकर शिफा को बदन से रूह तक पहुंचाने वाले तबीब को कत्ल कर दिया गया। वाबस्तगी, मजाहमत और खलूस की अलामत को खत्म कर दिया गया। तारीख 28 दिसंबर 2024। दुनिया ने एक तारीखी मंजर को देखा। सफेद कोट में मलबूस एक बच्चों का डॉक्टर तन तनहा तबाहशुदा इमारतों के मलबे के दरमियान चल रहा था। जहां वो जा रहा था वहां टैंकों और जदीद असलहे से लैस हर कानून से बेपरवाह इसराइली फौजी घात लगाए बैठे थे। इस डॉक्टर की जुर्रत और हिम्मत को देखने वाले देखते ही रह गए। दुनिया ने कहा कि अगर जुर्रत, हिम्मत और दिलेरी का जिस्म होता तो वो अबू सफिया होता। उसका नाम है हुसाम अबू सफिया। वो बच्चों का डॉक्टर है और गजा के शुमाल में वाकई कमाल अदवान अस्पताल का हेड है। दुनिया ने उसे अपने अस्पताल का दिफा करते, अपने जवान बेटे की नमाज जनाजा पढ़ाते, खुद जख्मी होने के बावजूद अपने मरीजों का इलाज करते और बेखौफ व खतर मुसल्ला इसराइली फौजियों की तरफ जाते देखा। सवाल यह है कि जब उसे मालूम था कि उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, कत्ल किया जा सकता है या फिर कैदी बनाकर गैर इंसानी सलूक का महकूम बनाया जा सकता है, तो इसके बावजूद वो इनके पास क्यों गया? आई इसकी वजह कमाल अदवान अस्पताल के हेड नर्स नबील हमीद से सुनते हैं। उस रात टैंकों की नकलो हरकत जाहिर कर रही थी कि अस्पताल पर हमला किया जाएगा और कब्जा कर लिया जाएगा। सुबह के 6 या 7 बजे के लगभग हम इंसानों को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे थे। इसराइली फौज माइक्रोफोन पर चिल्ला रही थी, डॉक्टर हुसाम नीचे उतरो। डॉक्टर हुसाम नहायत मुसम्मम शक्ल में अस्पताल से निकला और टैंकों की तरफ चलना शुरू कर दिया। डॉक्टर हुसाम इंसानों के साथ ऐसे सलूक करता था जैसे वो इनका बाप हो, भाई हो या बेटा हो। वो अपने मरीजों के साथ ऐसे था जैसे इनके कुंबे का फर्द हो। वो हमेशा अस्पताल के अमले और अपने इर्द गिर्द के लोगों की जरूरियात पूरी करने की कोशिश करता था। उसने और इसकी टीम ने नाकाबिले तसव्वुर हालात में काम किया। इसराइली फौज एक तवातुर से अस्पताल की तलाशी लेती और बाज़ुकात अस्पताल पर बमबारी की धमकी देती थी। इसराइली कोआर्डिनेटर उसे कहते थे कि अगर तुम अस्पताल से न गए तो हम इस अस्पताल का भी वही हाल करेंगे जो हमने अलशिफा का किया है, यानी तबाही और कत्लेआम। डॉक्टर हुसाम के पास दोहरी शहरियत थी और उसे मुतद्दद दफा अस्पताल से निकलने का मौका दिया गया, लेकिन खास तौर पर डॉक्टरों और तिब्बी अमले की किल्लत की वजह से उसने अस्पताल को छोड़ने से इनकार कर दिया। वो एक बच्चों का डॉक्टर था लेकिन जंग के दौरान उसने एनेस्थेसियोलॉजिस्ट के फ़राइज़ भी सर अंजाम दिए। इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में भी काम किया और एमरजेंसी वार्ड में भी मरीजों का मुआयना किया। अक्टूबर 2024 में इसराइली फौज ने कमाल अदवान अस्पताल पर चढ़ाई की और अस्पताल को घेरे में ले लिया। अस्पताल पर हमलों के दौरान उन्होंने डॉक्टर अबू सफिया के बेटे इब्राहिम को कत्ल कर दिया। बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, खुद उसे भी जख्मी कर दिया। लेकिन ये तमाम मसाइब उसके असमो इरादे को लम्हे भर के लिए भी मुतसलसल नहीं कर सके। डॉक्टर हुसाम अबू सफिया ने हर तारीकी, हर जुल्म और हर जबर के मुकाबले एक रोशनी के मीनार की तरह दुरुस्त समत की तरफ रहनुमाई जारी रखी। गजा में मुकाम शहादत तक पहुंचने वाले सिर्फ इंसान ही नहीं, खिदमत के दौरान तबाह किए गए अस्पताल और फलों से लदी शाखों वाले सरसब्ज दरख्त भी हैं। आइए एक ऐसे अस्पताल की दास्तान शहादत सुनिए जिसकी बुनियादों तक में शहीदों का खून था। तारीख 21 मार्च 2024। काबस इसराइल ने मार्च के वस्त में फायरबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए गजा पर हमलों का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया। इन हमलों के अव्वलीन अहदाफ में से एक फलस्तीन तुर्क दोस्ती अस्पताल था। अस्पताल को डायनामेट से उड़ा दिया गया। यह गजा का वाहिद कैंसर अस्पताल था। अक्टूबर 2023 में हमलों के आगाज से कुछ अरसे बाद इसराइली काबस फौजों ने अस्पताल पर कब्जा कर लिया और इसे फौजी हेडक्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फलस्तीन तुर्क दोस्ती अस्पताल, हमारा रुख फलस्तीन की तरफ और हमारा ज़ादेरा आज़ादी है के नारे से गजा के लिए इंसानी इमदाद ले जाने के लिए आज़मे सफर होने वाले गजा आज़ादी फ्लीट में शामिल ब्लू मारमरा बहरी जहाज पर इसराइल की तरफ से 31 मई 2010 को किए गए हमले और इस दौरान हलाक होने वाले 9 तुर्क रजाकारों की यादगार था। सामिन, इसके साथ ही हमारी आज की सोबत ख़त्म हुई चाहती है। अगली मुलाकात में फलस्तीनियों के अज़्म व इरादे के तर्जुमान एक और चेहरे के साथ मुलाकात की उम्मीद के साथ अपनी मेज़बान मिसबा शाहीन को इजाज़त दीजिए। बाखबर रहिए और बासमीर रहिए।